0: उजाला रेडियो डे अब प्लस पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते हैं. ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो. और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो.
1: क्या साजन को सजनी पसंद नहीं, फिर क्यों ये दरवाजा बंद नहीं?
2: करू कौन जतन जल्दी हो मिलन, करू कौन जतन जल्दी हो मिलन. सुनते हो सजन छननन छननन छननन, छननन.

अज्ञान के अंधकार से मुक्ति देने वाला परम पिता परमेश्वर ही है। वही जगत का पालनहार है। आओ निर्मल मन से शरणागत होकर प्रार्थना करें, हे प्रभु हम भटके हुए प्राणियों को राह दिखाओ।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

इस संसार में सभी मुसाफिर हैं, आते हैं और जब ईश्वर का बुलावा आता है तो चल देते हैं। आज जिसका शोक कर रहे हैं उसे तो नया जीवन भी मिल गया होगा। यही रीत है इस संसार की।

चरण संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

कितनी बेचैन होके हम तुमसे मिले। फिल्म कसूर अलका याग्निक एंड उदित नारायण, इन दोनों से आप सुने और ये उजाला रेडियो है।

और रब्बा आई ना जुदाई, फिल्म जुदाई का टाइटल सॉन्ग आप सुने। अलका अलका याग्निक, हरी हरन और जसपिंदर नीरू।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कह।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें। मुकेश जी की आवाज और फिल्म अनजान राहे से गीत को आप सुने और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम को। इन्फॉर्मेशन के लिए आप देखें वेबसाइट पर ujala.nl।

रूट के मत जाना। मोहम्मद रफी साहब के साथ आप सुने आशा भोसले की आवाज़ और बहुत पुरानी फिल्म 1958 खतीन अख्तन फैफ्तख के फिल्म फागुन से निकाला हुआ गीत। और अब आशा जी के साथ मुकेश जी को आप सुनेंगे।

हम दोनों मिलके कागज के दिल पे चिट्ठी लिखेंगे और जवाब आएगा, जरूर आएगा। मुकेश अंदाशाह जी, फिल्म का नाम तुम्हारी कसम स्टेशन, युवाड़ो जाला रेडियो।

0: फिल्म का नाम पूरब और पश्चिम, गीत के गाने वाले लता जी, महेंद्र कपूर और मनहर उदास। सुनने वालों, अब उजाला रेडियो का प्रोग्राम में चलिए, पेश है एक बैठक गाना हरिदत्त जयराम की आवाज में, सुनिए।
1: मनुष्य के जन्म पाइल है, मनुष्य रहा इंसान, एक दूसर के धन दौलत हड़प के बस गए मर, इस जन्म में देख गधा बन के भोगे भैया हाफिज।
2: अच्छा भैया जयराम, तो जब तू मरिए तब तू कौन की हो?
1: देख भैया हाफिज, जो हम भी कोई के धन दौलत हड़प के खाए के मर जा, और जो मरब कैसे ही गधा बन के हम भी भोग अपन करनी।

0: सपने में
1: अर्ज करना अपनी बात कहना भी है और सामने वाले को सुनने की जगह देना भी। किसी बातचीत की कितनी सुंदर शुरुआत हो सकती है। कभी बात लंबी नहीं होती, बस उसे कहने का ढंग याद रह जाता है।

आपने सुना दिल, छोटा सा नाम लेकिन रोज की बातचीत में कितने काम आता है, पसंद बताने में भी, अपनापन जताने में भी। अब फिल्म कॉकटेल 2 से सुनिए जब तलक।

अगली मुलाकात की उम्मीद पहले से मौजूद होती है। दरवाजे तक छोड़ने आए किसी अपने की मुस्कान में वह बात बिना कहे भी मिल जाती है। इसी परिचित ख्याल को सामने रखता एक नाम, फिर मिलेंगे हम।

बात में एक अलग तसल्ली है। जैसे बातचीत खत्म नहीं हुई, बस थोड़ी देर के लिए ठहरी है। समर जाफरी के साथ यह संगीत का पड़ाव था।

ये नाम पढ़ते ही तारीफ करने का वह सहज अंदाज याद आता है जब बड़ी बात कहने के लिए बड़े शब्द नहीं चाहिए। अब सुनिए हम।

एक छोटा सा शब्द कई लोगों को एक साथ जगह दे सकता है। उसमें घर की मेज के आसपास बैठे लोग भी आ सकते हैं और दूर रहने वाले अपने भी। अकेले अपनी बात कहने से अलग साथ की बात कहने में एक गर्माहट है।

अभी आपने सुना शुभ का फेल फॉर यू। आगे के गीत का नाम अपने आप में एक चमक लेकर आता है। सुनिए रंगीन।

आते ही कितनी छोटी चीजें याद आ जाती हैं। अलमारी में रखा पसंदीदा दुपट्टा, किसी पुरानी तस्वीर की पृष्ठभूमि या मेज पर रखा एक फूल, हर रंग की अपनी याद हो सकती है। उस ख्याल को बस यहीं रहने देते हैं, बिना उसे किसी बड़ी बात में बदले।

दिस इज उजाला रेडियो। संगीत का यह सफर जारी है। अभी आपके साथ था दर्शन रावल का माहिए जिन्ना सोहना। अगले गीत के लिए अब जगह बनाते हैं, सुनिए मजबूर।

मजबूरी का जिक्र बातचीत का रंग बदल देता है। कभी किसी का छोटा सा जवाब उसकी पूरी परिस्थिति नहीं बता पाता। उस शब्द में जो अनकहा रह जाता है वह भी ध्यान खींचता है। नाम से उठा यह ख्याल कुछ देर ठहरने लायक है।

0: बम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: आपने सुना पार्वती साधु तिवारी के साथ। अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, सुनिए हस हस।

0: तेरे प्यार की।
1: हंसी की याद अक्सर किसी चेहरे के साथ लौटती है, कभी पुरानी तस्वीर में, कभी किसी परिचित की बिल्कुल साधारण बात में। ऐसी यादों का अपना हल्कापन होता है, उन्हें समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ती।

तेरे बिना ना गुजाराए, इस नाम में किसी की कमी का सीधा एहसास है। कभी साथ की अहमियत उसकी गैर मौजूदगी में साफ दिखाई देती है, जैसे रोज की बातचीत का एक हिस्सा अचानक खाली रह जाए।

0: तुझे कुछ कहा था, कभी कुछ कहा था ना प्यार में, प्यार में जो तू बिलीव करिए, प्रोबेर दस वाल ना तो कहो मैं, जो ची तू वादा करिए, वादा जिक्र निभाइए। उजाला रेडियो, ये है सुनो और उजाला रेडियो के जरिए हम चलते हैं, दिल है सरनामे, द साउंड फ्रॉम सुरीनाम।
1: वीर हो कर दुश्मनों से मरना।
0: Een hele goede middag, dames en heren, sunt wallo. Welkom bij deze uitgebreide nieuwsuitzending van vandaag. Wij brengen u de belangrijkste updates rechtstreeks uit Suriname. Ja, zometeen gaan we naar Suriname. We kijken naar de politieke koers van Paramaribo, juridische spraakmakende zaken, de onrust in de onderwijssector en natuurlijk naar de prestaties van onze nationale selectie Nacho.

तो कौन के मंगिए, बाकी बहुत मुहती करिए, चाहे जितना मुहती करिए ना मिलेगा। एंड कभी कभी हम लोग अमन रलाची में बोला कि ए मेरे राजा।

गनवा में है कुछ बात है सुनो। गनवा जो सुनिए तो तू फलिफ्त हो जाइए। ढेर जन है जो अपन राजा के खोज हैगा, अब राजा ना मिले लगेगा। नया ब्लैक वे रोड ई मौसम में राजा मिल सकेगा या तो रानी भी मिल सकेगा। मदान मुझ वेल फॉर ओपस्तान है। Ham dikila vrijdag hebben mensen natuurlijk genoten van onze koffie chai middagshow met Arend natuurlijk. En Roy die ligt gewoon dubbel elke keer. U cabina belker hoe jalla keer. Maar u ghanten tsune hega u jalla, maar hij ligt wel dubbel van. Aur hum log bol le rahi ki sukke ki scorpion ke kaise bolo jaye hindustani mein. Ja, ik wist het zelf niet hoor, maar bichi

तेरे संग यारा भी आपने उजाला रेडियो के जरिए ये शानदार से नहमा सुने हैं एंड नतुलक गनवा तुलो मोइस सुने तो एक हैव ऑलस फॉर यू अपगेगेवन ऑलस अचरगेलाटन हम तोरसात माइले खनी रे तोरसात खनी हम सब कुछ छोड़ छाड़ के हम तोरसात माइले रहे उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम आपको इस बार नहमा सुनाने को जा रहे हैं यूली हैव दैट ऑल बेच गोर्ड टाइडेंस तेरे संग यारा या कभी कभी हो जाए तो En op deze zondag, Rotidag, gaan we luisteren nu naar Mighty Mukesh. कभी कभी हम बोलेगा कि जो जो तुके पसंद हैगा, वट वट यार लोग फिंड, फिंड को क्लर्क, वही बात करब हम.

जोन चीज तोके पसंद हैगा, जोन बात तोके पसंद हैगा, वही बात हमारे लिए करें। माइटी मुकेश के आवाज में आपने सुने हैं। बात मायल करे जो तू माय करे। यू आर उजाला रेडियो, यही सुनो लो। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, एक दिस शुड निमिस राय तो दमिया सोचे कि हम फलिफ्ट हो गए। नहीं, एक बेनी फलिफ्ट, एक बेनी फलिफ्ट, मैं मिशन बन जाए वेल फलिफ्ट तो के मोहल्ले को सही गनवन तो तू सुन। और ये है संजय जोधा, जोमदाग 1 नवंबर इन द मेरवाड, उजालास दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, संजय जोधा। और तू करते हो ना किले बाटे तो किले फन 15 नो एंड गेन स्टासपास कोटिंग है या दिस तू ना ओगोरी की स्टासपास कोटिंग मिली ना IBAN hega, gemeente ke paisa na hega. Dus je moet maar zelf kopen. En die kaarten zijn niet duur hoor, nee, 15, 20 euro. En ook paisa die kaart jega, als je rekent dat je gratis drankje krijgt, toe gratis parkeerkassen krijgen, gratis garderobe, gratis toilet. Paisa die kaart jega, allemaal mensen. 15 euro op een mooie zondagmiddag. Vanaf 2:30 hebben we fakkeloptocht en daarna hebben we concert met Sanjay Jodha. Satyam Matadina Suriname, Indru Neel Roy en Maus Muberoy, en Ravinder Singh, Bedi met Avishkar Orchestra. En nu Sanjay Jodha.

या प्यार में हम लोग कोई ना कुछ हम लोग ना बोल दे रहा है, कौन सी हम लोग ना बोल रहा है। एंड वी डू फॉर ऑल ऑफ अस, कोनो के दिल जीते खातिन हम लोग सब कुछ कर दिला है। फॉर ऑल द मन यू डू ऑल ऑफ फॉर है, झूठी फूटी जो चीज है हम लोग बोल देला। अब गनवा ये गनवा सुन कि हम तो दिल में आ गए लेगा तोर पूजा करबे, तोर साथ रहबे, जिंदगी तोर साथ हम बिताबे, सब कुछ तोर साथ हम करबे। ये गनवा सुनिए

हम देख लो तो अटैंडलक आगे एक दूजे में एक दूजे दिल में आ गए है अटैंडलक बहुत देर लगल एयर्स बोले फन हम बोली एयर्स फन सुन अब तेरे दिल में हम आ गए तो बोले फिर ना ये दिल हमार हैगा ये हमार दिल हैगा तेरा घर नहीं है तेरा और जगह खाली हैगा देख ले तो यू आर उजाला रेडियो ये है सुनने वाला और उजाला रेडियो का प्रोग्राम अभी आप बैठ गाना हंगामा आप सुन लेना और भी पेश किया जाएगा दोर एनिग एक्ट नेचुरली सुभाष सुगुमीन के जरिए ये प्रोग्राम पेश किया जाएगा फनफ ड्रीवर बैठ गाना हंगामा और रोटी दाख आज है रोटी दाख सोमदाख इज रोटी दाख दिस आज दैट नीड विस्ट तो तुम डायरेक्ट डायरेक्ट आज शुरू कर दे रोटी बना के जिना जाने है बनावे प्रोबेयर करवाओ ना ये कहूँ किने हम मैं ना चाहता बतिया बोले कि दी यंग जेनरेशंस कुनन गेन रोटी मेक होर या द यंग जेनरेशंस हैं द मेजेस फॉरऑल द मेजेस ना द यंग्स मूट ओक लेरन होर रोटी टू मेक या द ik kan ook roti maken jongens en meisjes ja probeer je ook roti te maken leer van je papa of mama om roti te maken in plaats van te gaan pieren waaien hier en daar hè nou roti benauwen en dit is Satyam Matadin ook aanwezig Surinamse eigenhega Satyam Matadin Nederland mee en 1 november meervaart mee met Avishkar Orchestra

अभी आपने सुने सुनवालों और भी उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है एंड इन बिजोंदर आज है फरियारी श्रीमान ग्लेन गणपत के आज फरियारी हैं या लाती फरमाने फंदाग और रोटी बनाइए वहां हम लोग आला रोटी खाए You are Ujala Radio, ये हैं सुनवालो और Ujala Radio के जरिए हम आपको ये नहमा सुनान गुजार रहे हैं अच्छा सुन जब तुके एक फ्रेंड या फ्रेंडिन हैगा तू माये कदो दे तो वेली यदि पर्सोन फरवेन है दन परफ्यूम किनिए ऑफ की तो सोना के चीज किनिए रिंग ऑफ एन केटिंग ऑफ वेट एक फिल कपड़ा वगैरह वगैरह वगैरह माया ये कान ook watermeloen geven hoor En dit is uit de film Sette Pesetta. Amitabh Bachchan, Sette Pesetta mein. Hema Malini ke khatin watermeloen laila.

जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे कोई हम सफर, कोई ना कोई तो मिलेगा है? दिल ना कहीं हारे के। सुनो वालों, इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। एक बैन मॉर्गन वे मेट कॉफी चाय मेरा शो मेट आनंद चंडिका सिंह। Ik wens jullie allemaal een hele mooie, fijne zondag. Mooiste zondag bitte je. Pyar mahabbat ke saath. En zometeen, Subhasi Gobind. Mooiste hier.

कुदरत का करिश्मा एक दूसरे से है मिलना, दुनिया की जरसमी पर किस्मत को है आसमाना, ये प्रेम का जहां है हर किस न भूल जाना, आपस के मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। हमारे सभी सुनने वालों को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम आज इतवार 4 तारीख अक्टूबर का प्रोग्राम आप लोग सुनने को जा रहे हैं।

हाँ, हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप एक हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार ये तो लाचार है, उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। करीबन 12 मिनट व्यतीत हो चुका है 3:12 खुद मेरा खालमाल, आप सभी को हम बहुत ही प्यार से दुलार से स्वागत करता हूँ। मैं हूँ सुभाष और जहां तक मेरी आवाज पहुंची वहां तक हम आप सभी को प्यार से दुलार से स्वागतम, वेलकम, खुद मेरा खालमाल। चाहे जहां पर आप लोग हमें सुनते होंगे, सुनते ही जाइए शाम में 5 बजे तक वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो वो हो सकता है व्हाट्सएप के जरिए, और उजाला रेडियो का व्हाट्सएप का फोन का नंबर 9203630008 पर, 9203630008 पर। और हम सोचे लो कि आप लोग मोई से बांटे और शाम में 5 बजे तक आप लोग हमारे साथ को देने वाले हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, चलिए पहला बैठक गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं, और इस बैठक गाना को गाने वाले होंगे स्वर्गीय रामदेव चैतू जी के आवाज में, आप लोग सुनेंगे और इस तरह से

शाबाश शाबाश, हाय मुझे लूट लिया सैया तेरे प्यार में। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, स्वर्गीय रामदेव चैतू जी। हमसे पहले प्रोग्राम को बनाए लोहित महावीर ए भाई लोहित दंकवेल। और प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा जो आप लोग सुन रहे हैं। और चलिए अब की बार जो बैठक गाना प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो दनहाँ शहर में सकई फिरंगन में, जहां पर इस वक्त लक्ष्मण श्रीमान लक्ष्मण प्रोग्राम को सुन रहे हैं। तो चलिए गाना आपके नाम हम कर देते हैं। और इस गाना को गाने वाले होंगे स्वर्गीय पंडित रामचंद्र बंसीधर। प्रोग्राम में एक ठुमरी आप लोग सुनेंगे।

0: De persoon die deze telefoonhouder heeft bedacht is echt slim. Het maakt niet uit wat voor smartphone je gebruikt, zodra...
1: ये वो जाना रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं और अभी गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने और वो भी खास करके पंडित रामचंद्र बंसीधर जी के आवाज में एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुनने वालों अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो गाने वाले होंगे स्वर्गीय स्वर्गीय सनातन जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और अगर आप लोग कोई भी गाना जो बैठे गाना सुनना चाहेंगे तो हमारा व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9 3 9 9 9 पर आप लोग हमें ऐप कर सके तो हम आपके लिए जरूर से बैठक गाना हम आपके लिए घुमा देंगे अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग हम आप लोग से बता चुके हैं स्वर्गीय सनातन जी के आवाज में गाना जो आप लोग सुनेंगे और ये गाना पेश है देखा जय अलमेरे में भाई मनोज मुंगार प्रोग्राम को बैठकर सुनते भाई मनोज ये गाना आपके नाम

शाबाश शाबाश ये पिया चलो ना नगरिया हमारी। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने एंड वो भी स्वर्गीय सनातन जी के आवास में। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो गाने वाले होंगे श्रीमान सत्यनंद रेखा जी, और इस गाना को मांग करने वाले हम सर हम सही तो उसमें भाई देव लक्ष्मण प्रोग्राम को बैठ कर सुने। तो चलिए भाई देव लक्ष्मण ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ, हम सर हम सही तो उसमें आप बैठ करके सुने हैं। वेलकम

Well, शाबाश शाबाश बोले पल पल बीती जाती उमरिया प्यारा प्यारा बचपन का। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, खास करके श्रीमान सत्यानंद रेखा जी आई बोई वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा यू आर उजाला रेडियो पर। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए तिल बरुख शहर में, जहां पर इस वक्त सुनीता भी प्रोग्राम को प्यार के साथ गाना को बैठ करके सुने उजाला रेडियो। तो चलिए गाना तुम्हारे नाम कर देता हूं और गाने वाले होंगे द किंग ऑफ बैठ गाना देवेंद्र सिंह सिवना जी। आई बोए गोड़ी रतिया के निंदिया कहां चुराई के हमें ले जाइए यार या

वेल, क्या बात है यार, गोरी रतिया के निंदिया चुराई के, कहां ले जाइयो हमको उड़ाई के। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, खास करके द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह सिवना जी, होरन चर में माला भी प्रोग्राम को बैठ के सुने, तो माला इस गाना को मांग किया है।

0: बेटी और खान सर के देपा जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने युवाड उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुनने वालों, मैं हूं सुभाष, आप हरे को शुभ दिन। और मेरे शहर में माइक बुद्धू जी प्रोग्राम को भी बढ़ के सुने, काम पर से घर आए भाई जी वेलकम। और ये चलिए गाना तुम्हारे नाम,
1: गली निकरी के बाजार हो
0: आया या।

0: शाबाश शाबाश यार, गैली निकेरी के बाजार एन गिर गैल झुमका। श्रीमान सत्यनंद रेखा जी, तो चलिए फैंस ऑफ ऑल में एमईजी प्रोग्राम को बैठकर सुने ये गाना तुम्हारे नाम।
1: जंगली की खरी अगर सोचो तो हम हैं दौलती के घर, पैसा जहान में तो नुकसान नगीन है, पैसा नहीं तो आदमी कौड़ी के तीन है। ठनठनाटन पे सारी दुनिया डोले रे,

राजा के झलक दिखा के काहे उनसे आजा। हाथ पकड़ के सैया जब तेरा मुखड़ा खोले हो

शाबाश शाबाश, और इस तरह से स्वर्गीय रामदेव चैतू जी के वास में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, तू ना डोले यार बोले तेरा पैसा डोले। वेल, कितना पैसा हो, तू ना डोले भैया तेरा पैसा डोले यार, तेरा पैसा तो चाहिए डोले के ना। एंड चलिए अब की बार दीमन शहर में फौसिया प्रोग्राम को बैठकर सुने, तो ये गाना तुम्हारे नाम फौसिया।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों, इतवार का शाम का प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। It's a Sunday, 4 October. आप सभी सुनने वाले को शुभ दिन। और अगर आप लोग बैठ करके भोजन करते होंगे, स्वादी से भोजन कीजिए। अगर आप घर के काम सफाई करते होंगे तो मोई से अपन घर सफा करिए, चाहे जो काम करते होंगे मोई से तरक्की करिए। होंगे शांति शिव नंदन के आवाज में। और ये गाना पेश है अम सलाम आकर में गोपी के लिए।

वेल शाबाश शाबाश और सरों से देखा जाए शांति सिंह नंदन की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और हम आप लोग से बता रहे थे कि इतवार के मेज़ घर पर कपड़ा तिरकी हो गए हैं एंड देखा जाए इसके फिर शहर में सानू जी भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं तो ये गाना तुम्हारे नाम

शाबाश शाबाश हरी हरी गंगा। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और देखा जाए हार्लेम शहर में सीता भी प्रोग्राम को बैठकर सुने, तो ये गाना तुम्हारे नाम स्वर्गीय द्रौपदी जी। या बे आई बोल

0: शाबाश और सरों से खास करके गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने स्वर्गीय द्रौपदी जी के आवाज में एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। हम आप लोग से बता चुके हैं कि इतवार के घर घर घर में काम हुए हैं एंड चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे सानू गनवा ना सुने रहा तो चलिए गाना तुम्हारे लिए
1: सुदे ना देवे, सुदे ना देवे।
0: आई बॉय

Jawel, Sutena Devi hame raat bhar Sutena Devi Ausra se the King of Bad gana khash karke aap log sune aur wo bhi khash karke Devendra Singh Sivna ji ke awaaz mein aur Yuvar Ujala Radio ka program jo aap log sun rahe hamare pyare sunne walon अब की बार गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं और इस गाना को गाने वाले हैं देखा जाए देवा जी और इस गाना को मांग करने वाले दनहाख शहर में राजेन भी बैठ करके सुने तो भाई राजेन चलिए गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ

0: शबाश शबाश। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने देबा जी के आवाज में, एंड यू आर उचाला रेडियो
1: जमुना के तीर, जमुना के तीर।
0: और चलिए फियालन शहर में श्रीमान राम सुख भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने, यू आर उचाला रेडियो वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा।

वेल शाबाश शाबाश। इस तरह से संदीप बदलू की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए सत्या और जॉनी भी प्रोग्राम को बैठ के सुने तो ये

से प्यासे पंछी और इस गाना को गाने वाले खास कर कृषम छेदी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुनें और रखे जाए हम सरम सही तो उसमें रॉबी रोजन भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं और भाई जान ये गाना तुम्हारे नाम।

शाबाज पारी करो रे। और इस तरह से कृष्ण चैती के आवास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, इट इज बैना क्वाट फोर फाइव या वेल पौने पांच का वक्त एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग को सुनाने वाले हमारे प्यारे सुनने वालों,

0: आपस में देखा तो गली मुस्काई, वेल यार भैया ता के लड़की, द यंग टाइगर ऑफ बैड गना विशाल हीरा के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, यही कोई भूखा ना रह जाए तो कि जब हाथ गोड़ तोड़ चले तब अरे यार बाका भात भूजल भात, या तो अंडा बाका कर ले या तो कुछ और बना ले। वीकेंड है, वीकेंड ना बा इतवार बा बैना
1: कोदाया पे कोदना
0: मोरखवेल अलमल वर्कन यावेल
1: अब ही बाली मोरी उमरिया हमरे कोदाया पे कोदना
0: हम सरम सहित उसमें हमारी मामी खैरदा जी भी प्रोग्राम

0: शाबाश द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह सेवनाथ जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। हमारे प्यारे सुने वो लोग, घड़ी तरफ देखा जाए तो करीबन 3 मिनट बाकी रहा 5 बजने में, और एक आखिरी गाना हम घुमाने वाले हैं खास करके सीता आयत हार्लेम। चलिए सीता, एक शुभ दिन तुम्हारे लिए,
1: बता दे तुझे जाना,
0: और ये गाना भी पेश है सभी सुनने वालों के लिए जो हमारे साथ दिए, सभी बैठक गाना का चाहने वालों के लिए, जो भी आप बैठक गाना से प्यार करते हैं।

इतना भी हम जान लें कि त्वे युरुचस बैठ गना इस तकोर्थ मैं यहाँ तेरे बिना हो गोरी कैसे। आप लोग मोइसे रहिए अपना इतवार का शाम और इतवार का राती मोइसे बिताइयो मोइसे खाइयो मोइसे पियो मोइसे रहिए वही बतिया बोल लो जो भी करिए प्यार से करिए वरना ना करिए यार कोई से प्यार है बोल देना कि हमें तुम्हें प्यार है या वेल बाय बाय स्वाय स्वाय आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार राम राम नमस्ते एंड आदाब खिदमत की आपका दोस्त सुभाष शिवगोविंद।

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

मैंने तुझे मांगा है, तुझे पाया है। नया जिंदगी में कभी कभी ऐसे चीजवा हो है कि तू कौन के मंगे, बाकी बहुत मुहती करिए, चाहे जितना मुहती करिए ना मिले हैगा। एंड कभी कभी हम लोग अमन रलाची में बोला कि ए मेरे राजा।

एक गनवा में है क्या कुछ बात है सुनो गनवा जो सुनिए तो तू फलिफ्त हो जाइए ढेर जन है जो अपन राजा के खोजेगा अबे राजा ना मिले है यार नया ब्लैक प्रवेर ई मौसम में राजा मिल सकेगा या तो रानी भी मिल सकेगा मदाम मुझे वेल फॉर ओपस्तान है हम देखिला vrijdag hebben mensen natuurlijk genoten van onze coffee chai middagshow met Arend natuurlijk. En Roy die ligt gewoon dubbel elke keer. U cabina belker hoe jala keer. Maar u ghanten zoenen hega u jala, maar hij ligt wel dubbel van. Aur hum log bol rahe ki sukke ki scorpion ke kaise bol jaye hindustani mein. Ja, ik wist het zelf niet hoor, maar bitch

ओ तेरे संग यारा भी आपने उजाला रेडियो के जरिए ये शानदार से नहमा सुने हैं एंड नतुलक गनवा तुलो मोइस सुने तो एक हैव ऑलवेज फॉर यू ओपगेवन ऑलवेज अचरगेलाते हम तोर साथ मायला खनी रहे तोर साथ खनी हम सब कुछ छोड़ छाड़ के हम तोर साथ मायला रहे उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम आपको इस बार नहमा सुनाने को जा रहे हैं यूली हैव दैट ऑल बेच गोट टाइम्स तेरे संग यारा या कभी कभी हो जाए तो En op deze zondag, Rotidag, gaan we luisteren nu naar Mighty Mukesh. Kabhi kabhi ham bolila ki jo toke pasand hai ga, wat jij leuk vindt, vind ik ook leuk. Ohi baat karab ham.

या प्यार में हम लोग कौन ना कुछ कुछ कौन ची हम लोग ना बोल देला है कौन ची हम लोग ना बोल देला है एवदू फन आल से नहवत कोनो के दिल जीते खातिन हम लोग सब कुछ कर दिला है फॉर ऑल द मन वी डू ऑल सर फॉर है झूठी फूटी जो ची है हम लोग बोल देला अब गनवा ई गनवा सुन कि हम तो दिल में आ गए लेगा तोर पूजा करबे तोर साथ रहबे जिंदगी तोर साथ हम बिताबे सब कुछ तोर साथ हम करबे ई गनवा सुनिए

देख लो तो अटैंडलक आगे एक दूजे में एक दूजे दिल में आ गए है अटैंडलक बहुत देर लगल एयर्स बोले फान हम बोली एयर्स फान सुन अब तेरे दिल में हम आ गए तो बोले फिर ना ये दिल हमार हैगा ये हमार दिल हैगा तेरा घर नहीं है तेरा और जगह खाली हैगा देख ले तो यू आर उजाला रेडियो ये है सुनने वाला और उजाला रेडियो का प्रोग्राम अभी आप बैठ गाना हंगामा आप सुन लेना और भी पेश किया जाएगा दोर एनिग एक्ट नेचुरली सुभाष सी गोविंद के जरिए ये प्रोग्राम पेश किया जाएगा फनफ ड्रीवर बैठ गाना हंगामा और रोटी दाग आज है रोटी दाग सोमदाग इज रोटी दाग दिस आज दैट नीड विस्ट द तुलोन डायरेक्ट डायरेक्ट आज शुरू कर दे रोटी बना के जेना जाने है बनावे प्रोबेयर कर वेल ना ये कहूँ कि हम मैं ना चाहता बतिया बोले कि दी यंग जेनरेशंस कुनन गेन रोटी मेक होर या द यंग जेनरेशंस हैं द मेजेस फॉरऑल द मेजेस ना द यंग्स मूट ओक लेरन होर ओम रोटी टू मेक वांट आई कैन ओक रोटी मेक यंग्स एंड मेजेस या प्रोबेयर यू ओक रोटी टू मेक लेर फॉर योर पापा ऑफ मामा ओम रोटी टू मेक in plaats van te gaan pieren waaien hier en daar. Hè? Nou, roti benauwen. En dit is Satyam Matadin. Ook aanwezig. Suriname se aigehega. Satyam Matadin, Nederland mee. En 1 november meervaart mee met Avishkar Orchestra. Satyam Matadin.

तो बहुत ना चाहा तुझे, वाह क्या गाना है सुनने वालों। एंड फॉर द दाम इज इन हियर, वेरी मेजर लीव फॉर द अंदर है, डू नीड सो हार्ड टुगेदर, want ik wat er niet onzeker hoe je ja. Nou ja, voor sommige mannen en vrouwen, ja, kijk, als je één niet wilt, dan

गनवा सुन ले रहे तो फन अब्दिल पे अब्दिल हमारा आगे है तो रुपए गनवा पे रहा कि ये दिल है मेरा, ये दिल है मेरा, तेरा घर नहीं तेरा, तेरा घर नहीं तेरा, जगह खाली नहीं हैगा। Maar goed, we gaan even nu iemand feliciteren, Aartje. We gaan even naar Rotterdam. Rotterdam mee, Rehe. En de jarige daar is Dick Hajai. Samdi Bhai, Sriman Glenn Gunpat ki Aartje verjaardag heeft van harte gefeliciteerd. Namens Samdi Bhai Anand Chandrika Singh en Samdin Shanta Chandrika Singh. Van harte met u verjaardag. इनकी तरफ से आपको बधाइयां शुभकामना पेश किया जा रहा है और नतुलक नामस सूरज एंड सपना एंड एखनोत जैन की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाइयां शुभकामना पेश किया जा रहा है फॉर हार्ट मैथ्यू फरियादा श्रीमान ग्लेन गणपत हमदनी कैबरीज के पहले मैं बहुत यंग बाटे तू फॉर हार्ट गेफेलिसिटेट मोइस मनाई है आज फरियारी और तू जाने है आज है रोटी दाग तो आई होप दैट यू फील रोटी गाट ईटन वंदा मोई से फरियारी आज मनाई है नॉमाल्स फन हार्ट गेफेलिसिटेट मैथ यू फरियादा श्रीमान ग्लेन गणपत Die is vandaag jarig. Van harte namens Soeres Sapna. Namens uw echtgenote Aapke Dharmpatni Jane Ketrafse. Namens Anand en namens Shanta. En jitne pariwaar hai sabhi Ketrafse Aapke badhaiya aur shubhkamna pesh kiya ja raha hai.

गुड डे टू यू. अभी आपने सुने सुन वालों और भी उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है. एंड इन बिजोंदर आज है फरियारी श्रीमान ग्लेन गणपत के आज फरियारी हैं. लाती फरमाने फना और रोटी बनाइए, मत हम लोग आला रोटी खाए. यू आर उजाला रेडियो, ये है सुन वालों और उजाला रेडियो के जरिए हम आपको ये नहमा सुनाने गुजार रहे हैं. अशिया सुन, जब तुके एगो फ्रेंड या फ्रेंडिन हैगा तू माए कदो दे तो वेली यदि पर्सोन फरवेन है दन परफ्यूम किनिए ऑफ की तो सोना के चीज किनिए रिंग ऑफ ऑन केटिंग ऑफ वेट एक फिल कपड़ा वगैरह वगैरह वगैरह. मैं ये कान ओक वातम लूं खेफ. En dit is uit de film Sette Pesetta. Amitabh Bachchan, Sette Pesetta mee. Hema Malini ke gaat in watermeloen leilen.

अमिताभ बच्चन और आनंद हरदम दिवे हैगा वातिमलून कोनो के कभी ना परफ्यूम दे रहेगा ऑफ अंदर शॉट थिंग्स ब्लूम भी ना दे रहेगा आनंद ना दे रहेगा खानी खानी वाद मिलून दे रहेगा उजाला रेडियो यहाँ सुन वाला उजाला रेडियो का प्रोग्राम में भी तीन बजे से आप सुन लेना बैक टू गाना हंगामा पेश किया जा रहा है और भी सुभाष सुगुबिन के जरिए जरूर आप सुन लेना फ्रॉम ऑफ 3 टॉट 5 एंड जो लोग सरनाम दिस के न्यूज ना सुन पाए सहेगा आज दिट वोट ऑन सनाम दिस की न्यूज वोट हर हाउथ

जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे कोई हम सफर, कोई ना कोई तो मिलेगा है? दिल ना चाहिए हारे के। सुनो वालों, इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। एक बैन मॉर्गन वे मेट कॉफी चाय मेरा शो मेट आनंद चंदिका सिंह। एक बैन जुलू अलमाल एन हेले मोये फाइन सोंदा मोय से सोंदा बिताइए प्यार मोहब्बत के साथ। एन सो मतें सुभाष गोविंद मोय से रहिए।

0: अरे तुझे नहीं मालूम, लड़का ही होगा।
1: अरे जा जा, लड़की होगी।
0: मैंने जो कह दिया लड़का होगा तो लड़का ही होगा।
1: भाई मैं जो कहती हूँ लड़की होगी।
0: ओहो भाभी, अब तुम्हें समझो।

आपको स्वागत है उजाला रेडियो का प्रोग्राम में गीत और गजल की दुनिया। यहीं से इस चुन के साथ आरंभ किया जा रहा है वही प्रोग्राम जिसमें गीतों और गजलें हम आपको सुनाते हैं, वही प्रोग्राम जिसमें बातें हम कम करते हैं ताकि इत्मीनान से आप बैठ करके और इस प्रोग्राम को सुन सके। तो चलिए पहला फनकार आज का प्रोग्राम में होंगे जगजीत सिंह जी।

मैं जिंदगी की सहर लेके आ गया, कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया। जगजीत सिंह की आवाज में गजल को आप सुने, और अब हिस्सा लेंगे गुलाम अली साहब।

कम है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। गुलाम अली साहब की आवाज़ में आप गज़ल को सुने। उजाला रेडियो है ये, गीत और गज़ल की दुनिया।

धड़कने कोई सुन रहा होगा। पंकज उधास जी की आवाज, उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया।

मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मेहंदी हसन की आवाज में आप सुने, और इसी फनकार की आवाज में एक और गजल पेश है। उजाला रेडियो है ये, गीत और गजल की दुनिया, प्रोग्राम का नाम

में पुकारा करेंगे मेहदी हसन की आवाज में आप गजल को सुने। और अब एक बार फिर पंकज उदास जी प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे।

अब हमें तुमसे मोहब्बत है, ये छुपाना भी नहीं आता और बताना भी नहीं आता। पंकज उधास जी की आवाज में आप गजल को सुने। उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया है ये सुनने वालों, जो कि आप के साथ और हजारों लोग सुन रहे हैं।

फरीदा खानम से आप सुने कि आज जाने की जिद ना करो। उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया में अब एक आखिरी गजल

सनो एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। या नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में आप सुने। En ik moet toegeven, je moet wel van de stijl houden van Nusret, anders, nee, anders vind je het gewoon niet mooi. Maar अगला जो हम आपको अगली गजल जो आपको हम अब सुनाने को जा रहे हैं मेहदी हसन की आवाज में, तो ये गजल जो है, अगर जो बीते गजल आपको नहीं पसंद आए हुए होंगे तो ये गजल जो है तो जरूर पसंद आएगी आपको, सुन लेना।

रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गये, रफ्ता रफ्ता मेहंदी हसन से आप सुने। उजाला रेडियो, गीत और गजल की दुनिया आपकी खातिर।

चले जाओगे तो सोचेंगे कि हमने क्या खोया और क्या पाया। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह, हाँ, इन दोनों से आप गीत को सुने। और अब अगली गजल जो है अशोक खोसला की आवाज में पेश है। एक बार फिर शुरू करता हूँ। हाँ, पेश है।

तुम्हें प्यार करने के जी चाहता है, अशोक खोसला की आवाज में गीत को आप अभी सुने। उजाला रेडियो है ये सुनने वालों, और पेश है प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया।

सकोगे मुझे तुम नज़र से गिरा रहे है। आप इस गीत को गज़ल को सुने मेहंदी हसन की आवाज़ में, और हम आपको एक राय दिए थे, याद है, अगर इस प्रोग्राम से और ज़्यादा लुफ्त आप उठाना चाहें तो घर के चराग जो है कम कर दीजिए, रेडियो की आवाज़ और ज़ोर कीजिए, आंखें बंद करके फिर सुनिए।

जवां दिल के धड़कनों को गिन के बता कि दिल में प्यार है कि नहीं। आप सुने जगजीत सिंह से, हाँ जगजीत सिंह से, झुकी झुकी सी नजर। अच्छा लगता है अगर ऐसा हो तो आप एक ईमेल भेज सकते हो info@ujala.nl हमारे पास। अगर ना अच्छा लगता हो तो भी, हाँ तो भी ईमेल आप भेज सकते हो

एक तू ही धनवान है गोरी और बाकी सब कंगाल। पंकज उदास की आवाज में आप गजल को सुने उजाला रेडियो पर। गीत और गजल की दुनिया हमारे साथ आपकी खातिर।

वो कागज की कश्ती और वो बारिश का पानी। जगजीत सिंह, हाँ जगजीत सिंह की आवाज में आप सुने। और इस गीत और गजल के प्रोग्राम में अब हिस्सा लेंगे गुलाम अली साहब।

का इस हिस्सा में आखिरी गजल को आप सुन रहे हैं। बहुत जल्दी हम फिर आपसे मिलेंगे ऐसा ही प्रोग्राम को लेकर के। हमारा इंतजार कर लेना जरूर।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

ब्लू जाना रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो डीएबी प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ